नमः। ओम श्री साई आनंददाय नमः। ओम श्री साई आर्तत्राण परायणाय नमः। ओम श्री साई अनाथनाथाय नमः। ओम श्री साई असहाय सहाय

नमः। ओम श्री साय साधु मानस परिशोधकाय नमः। ओम श्री साय साधकानुग्रह वटवृक्ष प्रतिष्ठापकाय नमः। ओम श्री साय सकल संशय हराय

वाहेगुरु वाहेगुरु जी बोलो वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु जी बोलो सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम जी बोलो सत्य नाम सत्य नाम बोलो सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम जी बोलो सत्य नाम नित्य नित्य जपिए तेरे नाम जी बोलो नित्य नित्य जपिए बोलो नित्य नित्य जपिए

आधार ये करम माता पिता बंधु सख सब पिता मना जन जीवन घन ये करम भक्त जन जीवन घन ये करम

0: बादशाह मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर पधार रहे हैं।
1: तानसेन रामनाम संकीर्तन चेयंडी।

आधार है ये करम माता पिता बंधु सख सब पिता मना जन जीवन घन ये करम भक्त जन जीवन घन ये करम

पुटपर्ति पुरंदर नारायणा गोविंद गोविंद नारायणा गोविंद गोविंद नारायणा सत्य सनातन नित्य निरंजन भक्त परायण नारायणा